0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
5: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का

0: 24 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जत्ति के तेज।
1: अभी आप सुना रहे थे रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज। आज के कार्यक्रम हम लोग विशेष कार्यक्रम लेके उपस्थित हुआ गया है। आज के संवाद कार्यक्रम में खास करके हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करा जी है। और आज के प्रत्यक्ष संवाद की खातिर चर्चा करने की खातिर आज के पहुना है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार मनीषा खटाटे। आज उनसे हम खास करके हिंदी साहित्य के बारे में जो है चर्चा कर रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे रेडियो कृष्ण सार एफएम में आपका। जिसे अभी आप जो है भारत से नेपाल आवागा है,
2: हाँ।
1: तो कैसा है आपका जो है नेपाल आते और जो है आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है आप साहित्यकार के रूप में भी परिचित हैं। आपका परिचय हम थोड़ा तो बताएं हैं, खास करके आप इफिनिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी नासिक बुक्स प्रकाशन संस्था के संस्थापक भी हैं, है ना, और जो है अनंत शोध सृजन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी त्रैमासिक पत्रिका के संपादक भी हैं। इसे और आपका जैसे पहचान कराना जिसे करावा जाए तो जिसे आपके और पहचान का है।
2: सबसे पहले सबको प्रणाम। नेपाल की धरती को मैं सादर वंदन करती हूँ। नेपाल में इस बार मैं तीसरी बार आ रही हूँ। सबसे पहले नेपाल का द्वार मेरे लिए जो खुला गया वो भारत नेपाल मैत्री संघ की सभासद जो हमारे महाराष्ट्र में आई थी माननीय सुषमा शर्मा जी, उनके वजह से ही मुझे नेपाल में हर एक का परिचय होता गया। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर भरता है उसी तरह से हर एक व्यक्ति को मैं मिलती गई। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल ये मेरा दूसरा घर है। मैं मनीषा खटाटे नासिक महाराष्ट्र भारत से आई हूँ। मैं हिंदी साहित्य में लेखन करती हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा काफ़ी काम चलता है और एक मातृभाषा मेरे मराठी होकर भी मेरा जो भी साहित्य है वो हिंदी साहित्य में ही काम चलता है। इस तरह से मेरा परिचय है।
1: जैसे आप तीन बार आ चुके हैं ना नेपाल, तो जैसे आप नेपाल तीन बार आ चुकी, कैसा है नेपाल और नेपाल के बारे में जैसे कुछ एनालिसिस कैसे करें?
2: सबसे पहले मैं नेपाल आई थी तब मैं सोनोली बॉर्डर की तरफ से यानी कि गोरखपुर की तरफ से नेपाल में आई थी। फिर मैं सोनोली की तरफ से फिर लुम्बिनी गई। लुम्बिनी में मैंने गौतम बुद्ध जी का जो स्थान है वहाँ के दर्शन लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अप्पो दीपो भो की जो उन्होंने जो दुनिया को संदेश दिया है, पहले अपने आप में झांको, अब अपना अंदर का प्रकाश है वही।

0: डट कर सामना कर सकते हो। उसके बाद मैं काठमांडू गई, काठमांडू में मैंने पशुपतिनाथ के भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद वहाँ मेरा परिचय नई प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र परसाई जी और उनकी पत्नी इंदिरा परसाई जी, इनके साथ हुआ। शेखर गिरी जी जो वरिष्ठ साहित्यकार है नेपाल के, उनके साथ हुआ। ओपाल अश्क जी, इनके साथ हुआ। नेपाल के काफ़ी साहित्यकार है और नेपालगंज के तो इतने साहित्यकार मेरे पहचान के हैं। और मुझे जो तीसरी बार आने का जो अवसर मिला है, नेपालगंज के वरिष्ठ साहित्यकार सनद रेग्मी जी, इनका आज 80वां जन्मदिन है। उस अवसर पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। खास भारत की तरफ से मेरा प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सबसे पहले सनद रेग्मी जी, इनको मैं एक आदर्श मानती हूँ, एक आदर्श साहित्यकार के रूप में मैं उनको जानती हूँ। उसके बाद सुषमा शर्मा जी जो भारत नेपाल मैत्री संघ की सभासद है, सनद रेग्मी जी, कृष्ण मुरारी, प्रसाद भट्ट जी, हरि तेमिल सेना जी, सावित्री गिरी जी, कल्पना पंडल जी, किरण आचार्य जी, ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है जो नेपाल के साहित्यकारों की और मेरे अच्छे घनिष्ठ मित्र बने हैं। और उनका साहित्य नेपाली होकर भी मुझे अच्छी तरह से मैं वो पढ़ सकती हूँ और नेपाली भाषा में भी थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास भी कर सकती हूँ।
1: जैसे आप जो है, आप लंबे समय से साहित्य क्षेत्र में लेखन जो है करा रहे थे, है ना, और खास करके आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करीब 20-25 ठो जो है पुरस्कार और सम्मान भी पा चुकी हैं, है ना। तो जैसे आप हिंदी साहित्य का यात्रा कब से शुरू किया, हिंदी साहित्य का यात्रा कैसा है आपका?
0: उसकी शुरुआत मैं दो कविता के पद से करती हूँ। मातृभाषा मराठी के आंचल में पला मेरा बचपन, राष्ट्रभाषा हिंदी से मिली मुझको पहचान, अनेक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से मिला है मुझे सम्मान, अनेक भाषाओं की डोर थामे मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं हिंद की बेटी एक कदम और बढ़ा रही हूँ। मेरा परिचय वैसे तो सृजन शीलता और मेरा साहित्य है। जब से मैंने लिखना शुरू किया तब से कविता कहानी यही मेरा परिचय देते हैं। मरुस्थल नाम से जो मैंने खंड काव्य लिखा है उसकी विशेषता यह है कि 100 साल पहले रांगेय राघव जी, जो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े लेखक माने गए हैं, उन्होंने दार्शनिक अंदाज में मरुस्थलीय खंड काव्य लिखा था। उसके बाद 100 साल के बाद हिंदी साहित्य में दार्शनिक खंड काव्य एक स्त्री द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य में भी खंड काव्य लिखने वाली पहली स्त्री और मराठी होकर भी हिंदी साहित्य में खंड काव्य लिखने वाली पहली स्त्री का मान सम्मान जो मुझे मिला है इसके लिए मैं आभारी हूँ। उसके साथ साथ मरुस्थल इस खंड काव्य के जो कविता के अंश है वो अनेक अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। करीब करीब 16 भाषाओं में इसके कुछ न कुछ चैप्टर, कविता या कुछ पंक्तियाँ प्रकाशित हो चुकी है। उसमें से मरुस्थल का मेरा हृदय तालियां बजाता है, माई हार्ट क्लैप, ये मिस्टर लारी ने हॉलीवुड में इस पर गाना तैयार किया हुआ है। स्टीफन बोर्डन अमेरिका से है, इन्होंने खटाटे इज़म यानी कि दार्शनिक अवधारणा इसके ऊपर भी एक यूट्यूब वीडियो बनाया है। चाइना, रशिया, भूटान, जर्मनी, नेपाली भाषा में ऐसे काफ़ी जगहों पे मरुस्थल के कुछ अंश अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। इसके लिए मुझे भारत की तरफ से सर रतन टाटा अवार्ड और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जीवन गौरव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी दिया गया है।
1: वही तो, जैसे आपका बहुत ज़्यादा जो है पुरस्कार मिला है, सम्मान भी है, और इसके साथ साथ है जैसे आपका अभी तक के प्रकाशन हुआ कीर्ति पुस्तक, किताब, कहाँ कहाँ है?
2: हेलो हेलो हेलो
0: सबसे पहले मरुस्थलीय खंड काव्य है, उसके बाद आता है दार्शनिक अंदाज में लिखा हुआ दर्शन, ये महाकाव्य है। मनीषा खटाटे और मैं, यह उपन्यास है। मेरे आयाम की कहानियाँ, ये कथा संग्रह है। और इसके साथ साथ एक कविता संग्रह, ये भी प्रकाशित हो रहे हैं। उसके बावजूद जो भी हिंदी की अच्छी किताबें मुझे लगती है उसका भी अनुवाद मैं मराठी में कर रही हूँ। पद्मश्री विष्णु पंड्या जी, जो गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके क्षण काल और इस पुस्तक का भी मैंने मराठी में अनुवाद किया है। आर डी सैनी, जो राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके किताब नाम का ही किताब का ही मैंने अनुवाद किया है। किताब का टाइटल ही किताब है। और ये बच्चों को एजुकेशन की तरफ, शिक्षा के प्रति किस तरह से रुचि तैयार हो, इसके ऊपर ये किताब है।
1: मतलब आप जो है खंड काव्य, उपन्यास, कथा जो है ज़्यादा लिखती हैं?
0: हाँ, और समीक्षा भी करती हूँ मैं, अच्छी किताबों की समीक्षा भी करती हूँ। ऐसा साहित्य की कोई भी विधा नहीं है कि जिसने जिसको मैंने छुआ नहीं है। मैं दर्शन के ऊपर भी काम करती हूँ, मैं कथा के ऊपर भी काम करती हूँ, कहानियों के ऊपर भी काम करती हूँ, उपन्यास के ऊपर भी काम करती हूँ।
1: जैसे आप खंड काव्य लिखा, ज़्यादा लिखा है, मरुस्थल खंड काव्य जो है ज़्यादा चर्चित है।
0: हाँ,
1: क्या है
0: ये? मेरा मरुस्थलीय खंड काव्य महारत में, महाराष्ट्र में किसी स्त्री ने लिखा हुआ पहला खंड काव्य है। पुरुषों ने आज तक उसके ऊपर पुरुषों के हाथों से खंड काव्य, महाकाव्य लिखे गए हैं। पुराने जमाने में जिस तरह से रामायण, महाभारत, कालिदास, ये एक खंड काव्य का जो महाकाव्य, खंड काव्य के जो प्रकार थे वो बीच में लुप्त हो चुके थे। यानी कि उसके ऊपर कोई भी इतने बड़े बड़े खंड काव्य क्या होता है, ये काव्य का प्रकार होता है। महाकाव्य ये काव्य का प्रकार होता है। यानी कि ये हमें गद्य के रूप में नहीं, ये पद्य के रूप में लिखने पड़ते हैं। और ये लिखते लिखते समय अभी बीच में क्या हो गया है, बीच के काल में एक कविता, कहानी, छोटी छोटे लघु कथाएं, ये आते गए। यानी कि जो हम लिखते थे वो भी कम इसमें लिखने की आदत एक लग गई थी, लेकिन ये खंड काव्य का जो अलग प्रकार है वो मैंने 100 साल के बाद फिर से लिखा है। और इस ये हजारों लोगों तक पहुंचा है और हर एक भाषा में, करीब करीब 16 भाषाओं में इसका अनुवाद हर एक भाषा में करने का प्रयास भी मैंने किया है, इसीलिए ये ज़्यादा चर्चित है।
1: आप जो है ज़्यादा लंबे समय से जो है साहित्य क्षेत्र में जो है लगा का है। अब जैसे आपके घर परिवार, आपके जो है समुदाय से भी जो है आपका कितना सहयोग मिलता है?
0: सबसे पहले तो मेरा परिवार का मुझे हर तरह से सपोर्ट मिलता है। उसमें मेरे पति राजेंद्र खटाटे जी और मेरा बेटा है।
1: साहित्य क्षेत्र में जैसे आप आर्थिक लाभ की बात करें, है ना, तो साहित्यिक क्षेत्र में तो नहीं है, समाज सेवा जैसे ही है। तो जैसे आप इतना लंबे समय से जो है साहित्य क्षेत्र में लगा है, लिखा गया है ना, आर्थिक क्षेत्र नहीं आता है ना इसमें, तो जैसे कैसे लगाव है कि जैसे हम इसमें लागेंगे, समाज सेवा करेंगे, कुछ आपका उत्प्रेरणा होगा ना शुरू से?
0: अच्छा, वो तो ऐसे कहा जाता है कि बुद्धि जिसके पास होती है, यानी कि जिसको सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं इस सोच से थोड़ी अलग सोचती हूँ। अगर आपको सरस्वती का आशीर्वाद है तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे जरूर आती है, ऐसा मुझे लगता है। अभी लोगों का कहना है कि पैसा अलग बात है और आप जो कर रहे हैं ये दिमाग खपाने का काम कर रहे हैं, इसे कुछ पैसा आता नहीं है। लेकिन पैसा आए ना आए, पैसा हम दूसरे काम से भी कमा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सपने हैं, हमें जो चाहिए, अगर वो कोई भी प्रांत हो, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ लिखना हो, एक पढ़ाई भी करनी हो या आपको दूसरे कोई भी क्षेत्र में काम करना हो, अगर सच्ची लगन से अगर आप वो करते हैं, शुरू में हर एक चीज़ में संघर्ष आता ही है, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। और ये भी कहते हो कि अगर हम किसी इंसान को देखते हैं, उसने बहुत उन्नति हासिल की है या बहुत ऊंचा मकाम पे वो पहुंचा है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष वही जानता है। उसके जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जिस तकलीफ से वो गुजरा है, तभी उसने आज वो दिन देखा है। एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता। उसके लिए दो तीन कविता के बारे में बोलती हूँ मैं। उत्तुंग हिमालय को छूने की अभिलाषा मेरे मन में अवतरित हुई। उत्तुंग हिमालय को छूने की अभिलाषा मेरे मन में अवतरित हुई। हाथ फैलाकर आंखें मूंदकर देखा तो ईश्वर की छवि अवतरित हुई। चांद, सूरज और हिमालय खड़े थे मेरे अस्तित्व के पीछे, या उन्हीं के हाथों ने मुझे संवारा पता ही नहीं चला। एक पल में सब मिला या सदियां लगी इस एक पल के लिए, यानी कि एक पल में इंसान को कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए रात दिन खपाना पड़ता है, तब हमें वो मकान तक हम पहुंच सकते हैं।
1: अब हम लोग थोड़ा साहित्य के देश के में अवस्था के बारे में बात करते हैं। हाँ। जैसे अभी भारत में साहित्य का अवस्था कैसा है?
0: अभी देखें तो साहित्य की अवस्था, आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, बच्चे अभी मोबाइल या यूट्यूब पिक्चर इसमें सब गए हैं, ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ने में बच्चों को लगाव नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मानती, क्योंकि क्या है, हम कितना भी शिक्षा हासिल करें, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो आप शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। स्कूल के लिए तो आपको किताबें पढ़नी है, अगर आपको यूट्यूब पे भी देखना है तो सुनना है, पढ़ना है, उसके ऊपर आपको दिमाग खपाना ही है। तो हर एक चीज़ हो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और शुरू में ही ऐसे एक भारत के महान लेखक है, उन्होंने कहा था, जब जब राजनीति गिरी है साहित्य नहीं संवारा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो दुनिया में होता है वो साहित्य के माध्यम से ही समाज में आता है।
1: अभी आप डिजिटल की बात करागा, जैसे अभी AI के जमाना है, चैट GPT से है, जैसे हमको कुछ कोई भी साहित्य का रचना या जो है कुछ कड़ी जो है मांगना है तो चैट GPT से पूछेंगे तो बता देगी। लेकिन इसे क्या ये डिजिटल चैट GPT और AI जो है कितना प्रभाव?
0: ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है आपने। चैट GPT पे आप कहते हैं कि हमें ये चाहिए दे दो, वो उतना ही देता है, उसकी एक मर्यादा होती है। और ग्रामेटिकल उसमें नहीं आता, यानी कि जो इंसान के अंदर की भावना से जो लिखता है
1: वो नहीं आती,
0: वो नहीं आती। और ग्रामेटिकल भी गलतियां बहुत सारी होती है, लैंग्वेज भी,
1: और जो भी जो और जो लिखा हुआ है सब चीज उसमें आपका गूगल में अपलोड भी नहीं है, तो उसमें नहीं, जब नहीं, तक नहीं, आपका गूगल पे अपलोड रहेगा तब तो खोज के लाएगी,
0: तब के खोज के लाएगी। तो मतलब यानी कि हम, और ये क्या है, सिर्फ एक मशीन है, जैसा हम उसे बोलेंगे, जैसा हम उसमें डालेंगे उतना ही वो हमें देगा। इंसान ने उसे बनाया है, उसने इंसान को नहीं बनाया, उसे एक लिमिट है और AI को एक लिमिट है। ठीक है, आज के ज़माने में AI चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान ने बनाया है तो आखिर वापस AI भी इंसान तक ही सीमित है।
1: और जैसे आप विभिन्न देश में भ्रमण करा गया है ना, गवा का भी है, विभिन्न कार्यक्रम में सहभागी भी हुआ है, तो साहित्य की अवस्था और देश का और जो कंपेयर करा जाए, उसका तुलना करा जाए तो कैसे पाए हैं?
0: वैसे देखा जाए तो साहित्य की अवस्था रशिया, जर्मनी, अमेरिका, ये जो देश है उसमें साहित्य की अवस्था बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे और कुछ ऐसे देश है कि जिसमें साहित्य के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, लेकिन साहित्य मरा नहीं है और साहित्य कभी मरेगा भी नहीं।
1: और जैसे अभी साहित्य का जो अभी युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, तो अभी के साहित्य में जो अभी देखा जाए तो हम लोग सब बुजुर्ग लोग जो ज़्यादा साल से लगे हुए हैं वो लोग है ना, कुछ युवा साहित्य लोग पिछले समय से जो है कुछ कविता कहानी कुछ जो है कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो अभी की युवा पीढ़ी लोग को जो है साहित्य क्षेत्र में थोड़ा बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए?
0: अभी इस प्रश्न के ऊपर मैं ये कहूँगी कि कितना भी पढ़ा लिखा और कितना भी युवा हो, गाने सुनता है, मूवी देखता है, तो ये क्या है, ये साहित्य से रिलेटेड ही चीज़ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक इंसान में कहीं ना कहीं कवि छुपा हुआ है, हर एक में, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई भी पेशे वाला हो। हाँ, हर एक का के मन की बात वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समाज के सामने हर एक व्यक्ति साहित्यकार बनकर उभर कर नहीं आता, यही उतना ही सच है। लेकिन इंसान है, मन में भावना है, तो भावना प्रकट करने के लिए जैसे सुख है, दुख है, हर्ष है, उसी तरह से मन की भावना को व्यक्त करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो मन में गुनगुनाता रहता है। ये भी एक साहित्य की विदाई है, ऐसा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि साहित्यकार अलग है और आम इंसान अलग है, लेकिन जिस तरह से अगर हर एक बच्चे को स्कूल में अगर सही ढंग से, और हमारे भारत में तो ये प्रयोग चलते हैं कि कविता कैसे, निबंध लिखते हैं, बच्चों को निबंध दिए जाते हैं, कविता लिखिए, कहानी तैयार कीजिए, यानी कि उनके क्रिएटिविटी को जिस तरह से हम उजागर करने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप साहित्यकार तैयार हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर एक ने साहित्यकार होना ही चाहिए, ये भी नहीं है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई भी क्षेत्र में हो, उसे पढ़ना तो चाहिए, उसके क्षेत्र का ही क्यों ना हो, उसको पढ़ना जरूरी है। और आज के ज़माने में तुम कितना जानते हो, यानी कि देखिए, पुराने ज़माने में जॉब आसानी से मिलते थे, आज के ज़माने में जॉब आसानी से मिलते नहीं है। तुम सबके सब ग्रुप में तुम अलग क्या हो, अलग क्या दे सकते हो, अलग कैसे कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें पढ़ना जरूरी है, अपडेट ज्ञान का लेना जरूरी है, तभी तुम समाज में की रेस है उसमें टिक पाओगे।
1: आपके पास जैसे मतलब और जैसे कोई कैसे लिखें इसको, इसमें इसको संपादन कर दीजिए।
0: हाँ, वैसे हम दो चार साहित्य लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने पूछा आप कैसे लिखती है, ये कैसा करना चाहिए, और कुछ किताबों का के ऊपर मैंने समीक्षा भी की है, अच्छी अच्छी भारत की कुछ किताबें हैं उसके ऊपर समीक्षा का काम भी मैंने किया हुआ है।
1: जैसे आप बहुत सारे जो है कविता कहानी और रचना वाचन किया लिखा गया है ना, कुछ उसमें में से दो चार ठोर अच्छा अच्छा चीज का जो है वाचन।
0: हाँ जरूर, मेरी मरुस्थल की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। स्वयं के आत्मा पर लगी गहरी चोटों को समझो तुम, स्वयं के आत्मा पर लगी गहरी चोटों को समझो तुम, वो क्या कहना चाहती है उसे जानो तुम, जान लो उसकी वेदना और दुखों को, वही खोलेंगे एक दिन आत्म प्रकाश के द्वार। मरीचिका से जल बहता नहीं कभी, निराशा से मनुष्य मरता नहीं कभी, ना समझो तुम मुझे नकारा, मैं मरुस्थल हूँ जनक तुम्हारा, मैं मरुस्थल हूँ जनक तुम्हारा। और एक दूसरी कविता मैं कहती हूँ, चलता ही चल तू अकेला, चलता ही चल, बढ़ता ही चल आगे, तू बढ़ता ही चल, चलता ही चल एक कदम से तू, चलता ही चल, ना मिले मंजिल तो भवसागर लगे बोझल तो, भवसागर लगे बोझिल तो, एकांत लगे सुख का प्याला, रुकना तू अब जब दिखे उजियाला, चलता ही चल तू अकेला, चलता ही चल, रिश्ते नाते टूट ही जाते, बंधन सारे मिट ही जाते, तारे सितारे गिर ही जाते, जो तू बढ़ने का ठान ही लेते, बढ़ता ही चल आगे तू बढ़ता ही चल, रुकावटे पहाड़ों जैसी देख ऊपर तू, डर ना लगे तुझे ऊंचाई से, एक कदम ही है सहारा, बढ़ता ही चल एक कदम तू बढ़ता ही चल।
1: मतलब ऐसे सारे कविता जो है आपके हैं, बहुत ज़्यादा सारे हैं।
0: हाँ।
1: जो है लिखा जाता है, इसे कहा जाता है ना। और जैसे अभी आपके भविष्य में, अब जैसे तमाम अभी बताएं, खंड काव्य लिखा है ना, उपन्यास लिखा है, और भी लिखा है, अभी और कोई प्रकाशन होने वाली तैयारी है आपका?
0: हाँ, अभी एक मेरी मेटाफिजिकल पोएम नाम की फिर से नाम दोहराती हुई है, मेटाफिजिकल पोएम नाम के, अंग्रेजी में भी मरुस्थल के अंश आने वाले हैं। और अभी नंदिता अभिनव ये मराठी में भी एक उपन्यास मेरा मराठी लैंग्वेज में भी आ रहा है, दर्शन नाम का एक महाकाव्य भी आ रहा है, ऐसे काफ़ी 6-7 किताबें मेरी अभी प्रकाशक के मार्ग पर है।
1: तो जैसे अभी जो आप नेपाल आए तो खास करके नेपाल में और भी तमाम कार्यक्रम में जो है सहभागी हुआ है, अभी का भ्रमण जो है आपका स्पेशल कोई प्रोग्राम है कि वैसे आए हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ साहित्य का कार्यक्रम था, सनद रिग्मी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनका आमंत्रण आया। और मुझे तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि लगे कि इतने बड़े साहित्यकार जो नेपाल में रहते हैं और उनके उन्होंने अगर आमंत्रित किया है तो जाना जरूरी है, और ऐसे मौके मैं नहीं छोड़ती।
1: तो वही इसीलिए
0: इसीलिए मैं आई हूँ।
1: और जैसे अभी साहित्य के विषय पर जो तमाम जो लिखते हैं है ना, उसको जो है अब सरकारी तौर पे देखा जाए, जैसे अभी साहित्य का, हिंदी साहित्य का हो है ना, आपको खास करके हिंदी साहित्य का, इसका जो है सरकार जो है कैसे लेता है इसको, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, जैसे साहित्यकारों का संरक्षण, साहित्यकार का जो है लिखा हुआ कृति प्रकाशन, मतलब सरकार से क्या अपेक्षा करती है?
0: सरकार के की तरफ से अपेक्षा अगर कहते हैं तो देखिए, अगर आपका साहित्य उस दर्जे का हो, आपकी एक किताब ही क्यों ना हो, अगर वो समाज को एक दिशा दर्शक होती है तो साहित्य को, उस साहित्य को सरकार की तरफ से जरूर पुरस्कार मिलता है, सराहना की जाती है। अभी एक छोटा सा उदाहरण जो भारत में, पूरे हमारे भारत में चल रहा है, नीम करोली बाबा की जो पिक्चर है हनुमान अंश, यानी कि उसकी भी अगर आप देखेंगे, एक ऐसा पिक्चर है कि शुरू में वो एक देशभक्ति, यानी कि उसमें हिंदू संस्कृति के ऊपर एक भगवान के बारे में बताने का काम किया, तो शुरू में बॉम्बे के जो ही बड़े बड़े चित्रपट बनाने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये कौन देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
1: अभी देखिए पूरा हॉल फुल है,
0: पूरा हॉल फुल है, यानी कि वही मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज हो अगर वो सही ढंग से हो और उसमें अगर दम है, आप में दम है, तो आप दमखम पे ही वो दुनिया में साबित भी कर सकते हैं। साहित्य का क्षेत्र भी वैसा है, आपके साहित्य में अगर दिशा, दुनिया को एक दिशा मिलती है, आपका साहित्य अगर एक इंसान को भी हिलाने वाला है तो फिर उसकी दखल ले ही जाएगी।
1: तो जैसे अब हमने रेडियो में आकर के आप अपना समय दिया है ना, अब और अंत में और कुछ कहना क्या है चाहती हैं?
0: मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और इसके लिए मेरा जो इंटरव्यू लिया गया वो राकेश मिश्रा जी, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ, राम प्रसाद जी और विनू यादव जी, सावित्री गिरी जी, कृष्ण मुरारी भट्ट जी, इन्होंने मेरे इस इंटरव्यू के लिए जो ही मुझे सहायता की है उसके लिए मैं कृष्णासार एफएम की को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद
1: धन्यवाद, आज आप आकर के जो भारत से इतनी दूर से आई और हमारी रेडियो को जो है समय दिया और जो है आप कुछ बातें साहित्य के बारे में चर्चा किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद, और फिर मुझे दोबारा यहाँ बुलाइए, मैं ज़रूर आऊँगी, जब भी मुझे नेपाल आने का अवसर मिलेगा मैं आपके रेडियो के लिए ज़रूर आकर मुलाकात देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।
1: अभी आप सुनागा आज के प्रत्यक्ष संवाद में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार मनीषा करके हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करेगा। आज के कार्यक्रम यहीं ख़त्म होते और आप जो है रेडियो कृष्णसार एफएम के आज विशेष कार्यक्रम में आप लोग जो साहित्य के बारे में चर्चा के बारे में जो है आप रेडियो में सुना जी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम भी संचालक विदा हुए थे, नमस्कार।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: गएको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
1: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
0: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
1: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, सोल्टिमोट काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414169।
3: रंग बहार रंग बहार
4: बर्जर सँगै उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
3: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनुहोस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
4: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि।
3: घर रंगाउ, खुशी बढाउ, उपहार जित्ने अवसर पाउ। बर्जर पेन्स।
5: मौसम पूर्व अनुमान सम्बन्धी के सूचना।
6: आवश्यक सतर्कता और पूर्व तैयारी अपनावे खातिर अनुरोध। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असोज 9 गते शुक्रवार से असोज 11 गते इतवार तक गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में यहाँ भारी से सैगर भारी बरसात और एक दुई स्थान में यहाँ अति भारी बरसात के समेत संभावना रहा है।
5: वही मेरे के कोसी, मधेश, बागमती और सुदूर पश्चिम प्रदेश के सैगर स्थान में यहाँ भारी से भारी और कर्णाली प्रदेश के थोड़े स्थान में यहाँ भारी बरसात के संभावना रहा है।
6: भारी से सैगर भारी बरसात के कारण बाढ़, पहिरो, पहाड़ से और अन्य जगह से चहला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यहाँ डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जात है। उ अवधि में यहाँ अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए।
5: आकस्मिक बाढ़ आ सकत है। कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए।
6: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 1155 में यहाँ संपर्क करा जाए। साथ ही विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 1234 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 1114 में यहाँ संपर्क करा जाए। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्याय अधिक पूर्व अनुमान, पूर्व सूचना, चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी।
7: यो कृष्ण सार एफएम
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: रंगाव दे देस मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: Junta Cable. 5 doszek dychi.
1: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जसिन तेज

0: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जसिन तेज।
1: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दै छ, थायराइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
2: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
1: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो, अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
2: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
1: कस्तो खबर?
2: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही, एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु, एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
1: ए साँच्चै?
2: अझै सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
1: ए त्यो त झन् राम्रो
2: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी एमबिबिएस, एमडी केयु, आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस, एमएस केयु, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
1: वा अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
2: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, एक्सरे, इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
1: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
2: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
1: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
2: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
3: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
4: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
4: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 98614169।
6: मन पर्यो त पर्यो, पर्यो
7: जब से तुमको देखा है।
8: सिंगापुर होलसेल,
9: नेपालगञ्ज सेतु बिकट चोक,
10: सिंगापुर होलसेल,
9: नेपालगञ्ज सेतु बिकट चोक, नामै काफी क्या दामी।
1: लेडिज तथा जेन्ट्स सबै उमेर समूह र सबै प्रकारका डिजाइनका फेन्सी कपडा पाइन्छ।
11: आजै रोजौ है।
9: मन पर्यो त पर्यो, पर्यो
8: नेपालगञ्जमा एकमात्र ठाउँ, होलसेल मूल्यमा खुद्रा फेन्सी कपडा किन्न, रोज्न, छुन, लगाउन पाइने स्थान सिङ्गापुर होलसेल।
9: सिङ्गापुर होलसेल सेतु बिका चोक, अहिलै जान पर्यो। हो सिङ्गापुर होलसेल मल, नेपालगञ्ज सेतु बिका चोक, फोन 97065992445, 98286650। सिङ्गापुर होलसेल मल।
12: समयमा पूर्व सूचना पाई, बह्य के जोखिम से ज्यान जोगाई, विपद बाजा बजा के नयाई, उहमारे पूर्व सूचना लैके नुकसान होए नै दी।
13: सर्वसाधारण मनै बह्य के खबर कैसिन के पैना,
12: जलो मौसम विज्ञान विभाग के पैसा नै लग्ना, टोल फ्री नम्बर 1155 मा फोन कैखा, लदियक बहाव हो बह्य के अवस्था के बारे मा निशुल्क जानकारी ली।
13: गाँव में राखल साइरन के आवाज हो, लडिया किनार में राखल रंग के अर्थ बुझी।
12: स्थानीय एफएम रेडियो टेलीविजन हो, मोबाइल में ऐना नेपाल टेलीविजन हो, एनसेल के सावधानी एसएमएस नियमित हेरना करी। रंग के संकेत बुझी पियर रंग सावधानिक संकेत लदिया में पानी के सतह बढ़ती बा सचेत रही सामान बंधना शुरू करी लाल रंग खतरा के संकेत बहिया कोनो फेन समय में गाँव में पैठे सेकी तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित ठाउँ में जाई
13: पूर्व सूचना पाइल पाछ तुरंत करे पर्ना तैयारी बहिया ऐना चेतावनी पाइल लगत्तै एक दुई घंटा आग करे पर्दा काम घरक सक्कु जहान एक ठाउँमा जम्मा करना ओ छर छिमेक मफे सचेत कराई
12: नागरिकता जन्मदर्ता जग्गाधानी पुर्जा नगद ओ गरगहना हेफे वाटर प्रुफ प्लास्टिक के झोलामा राख के सुरक्षित करना घरम पालल पस्पहुआ डोरी मसे छोड़ना या ऊंच सुरक्षित ठाउँमा लै जाई गर्भवती छोट बच्चा बुढाइलो आपांग हुईल मनैन पहिल प्राथमिकता देखे सुरक्षित आश्रय स्थल ओहोर लै जाई
13: स्थानीय सरकार के समन्वय में संचालित प्रबल परियोजना से जनहित में जारी
14: मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी सूचना
15: आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउनु हुन अनुरोध
14: नेपाल मौसम विज्ञान विभागका अनुसार असौज 9 गते शुक्रबारदेखि असौज 11 गते आइतबारसम्म गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा तथा एक दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ
15: त्यसै गरी कोशी मधेस बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा पनि भारीदेखि धेरै भारी तथा कर्णाली प्रदेशको पनि थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ
14: भारीदेखि धेरै भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरो गेग्रान बहाव आउने तथा सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र पूर्व तयारीका लागि अनुरोध गरिन्छ
15: उक्त अवधिमा अत्यन्त जरुरी नभई टाढा र रातिको समयमा यात्रा नगर्नुहोस्
14: आकस्मिक बाढी आउन सक्ने खोला खहरेका नजिकका बस्ती पहिरोको जोखिमयुक्त स्थान र खोला नदी किनारका बस्तीका बासिन्दाहरू बढी चनाखो हुनुहोस्
15: वर्षा र बाढी बारे जानकारी लिन 1155 सम्पर्क गर्नुहोस् साथै विपदमा मद्दत माग्न 1234 नेपाल प्रहरीको हटलाइन 100 र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको हटलाइन नम्बर 1114 सम्पर्क गर्नुहोस्
14: नेपाल मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशन प्रसारण हुने अध्यावधिक पूर्वानुमान पूर्व सूचना चेतावनी सम्बन्धी जानकारी लिइरहनुहोस्
15: नेपाल रेड क्रस सोसाइटी
0: कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जसिन तेज कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जसिन तेज
16: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
17: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9850303479 र 9840213780
18: ओहो आज दाई हाँ नै मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतु
19: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई न पश्चिम नेपाल के अनुभवी वो उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
18: ए बात तो ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में क्या क्या सुविधा मिलत
19: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
18: ए ओसी नो कलसे उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
19: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
18: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
19: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुन्ना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलात
18: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही टा
19: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
20: रंग बहार
21: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
20: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
21: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
20: बर्जर पेंस
18: खुशी के खबर खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
19: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार परसुति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
18: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
19: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 वो 98-482-80-465

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465। समय में यहाँ पूर्व सूचना पावा जाए, बाढ़ के जोखिम से जान बचावा जाए, विपद बाजा बजाई के ना आई, मने पूर्व सूचना तो नुकसान होई न दी।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1155 में यहाँ फोन करके नदी के था और बाढ़ के अवस्था बारे में निःशुल्क जानकारी लीन जाए।
1: स्थानीय सायरन और झंडा, गांव में यहाँ रखा गया सायरन के आवाज लंबा या तो छोट और नदी किनारे में यहाँ रखा गया रंग पेयर सतर्कता लाल खतरा के अर्थ समझो।
0: संचार माध्यम, स्थानीय एफएम रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल में यहाँ आवा नेपाल टेलीकॉम एनसीएल के अलर्ट एसएमएस नियमित देखा जाए।
1: नदी के जलस्तर नापे वाला खंभा के रंग के बारे में जानकारी दी जाए। पेयर रंग सतर्कता तो नदी में यहाँ पानी की सतह बढ़ते है, सजग रहा जाए और सामान बांधे शुरू की जाए। लाल रंग खतरा के तह बाढ़ कोनो समय में यहाँ गाँव में आई सकत है, तुरंत बाढ़ कोनो समय में यहाँ गाँव में आई सकत है, तुरंत घर

0: दिव्यता और अपांगता भय व्यक्ति लोगन के यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता में यहाँ रख के सुरक्षित आश्रय तरफ ले जावा जाए।
1: स्थानीय सरकार समन्वय में यहाँ संचालित परवल परियोजना द्वारा जनहित में यहाँ जारी।
2: बैक टू बैक, बैक टू बैक, हिंदी सॉन्ग ऑन, स्टे ट्यून्ड।

0: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
1: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
1: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुल निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कहके तह दिल हुआ जाए।
1: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
3: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
4: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
4: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98614169।
6: नमस्ते दाई।
7: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिन पछि देख्यौ त भाइ।
6: विदेश नाटकको दाई प्रोसेस गर्दै थिए, अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
7: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त, अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
8: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
9: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
10: हाम्रा विशेषताहरू:
9: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
10: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर, थायराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपीडी सेवा।
9: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान, बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर, थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
9: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबिएफ काठमाडौँका निसन्तान, बाझोपन, महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
10: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा।
9: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
10: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%-50% सम्म विशेष छुट सेवा।
9: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिम पट्टि, एनआईसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला, कारकान्तो चोक, नेपालगञ्ज।
10: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
11: रंग बहार रंग बहार
12: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
11: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
12: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
13: घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
11: बर्जर पेन्स
0: मौसम पूर्व अनुमान संबंधी के सूचना
14: आवश्यक सतर्कता और पूर्व तैयारी अपनावे खातिर अनुरोध नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असोज 9 गते शुक्रवार से असोज 11 गते इतवार तक गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में यहाँ भारी से सैगर भारी बरसात और एक दुई स्थान में यहाँ अति भारी बरसात के समेत संभावना रहा है
0: वही मेरे के कोसी मधेश बागमती और सुदूर पश्चिम प्रदेश के सैगर स्थान में यहाँ भारी से भारी और कर्णाली प्रदेश के थोड़े स्थान में यहाँ भारी बरसात के संभावना रहा है
14: भारी से सैगर भारी बरसात के कारण बाढ़ पहिरो पहाड़ से और अन्य जगह से चाला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यहाँ डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जाता है उ अवधि में यहाँ अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए
0: आकस्मिक बाढ़ आई सकत है कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए
14: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 11:55 में यहाँ संपर्क करा जाए साथेन विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 12:34 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 11:14 में यहाँ संपर्क करा जाए नेपाल मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्याय अधिक पूर्व अनुमान पूर्व सूचना चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी
15: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ

0: रंगाउ देस मेरो एवरेस्ट।
1: माया बाबू टेलर के तो सक्कू सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो?
2: छी दादू अपे ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू?
2: उहाँ तो अनमोल उषा वो ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरमत कई जी था। एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कू पार्ट पुर्जा वो सामान फे पाजी था। अट्रगेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरमत फे करा जी था।
3: एक एक संगे दस्या देवारी हो छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
1: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 9841828318 और नंबर बा 9824542478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
4: आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हर्ट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरु दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरुमा जानकारी गराउँदछौँ।
5: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट अट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
4: उपलब्ध सेवाहरू
5: ईसीजी, इको, टीएमटी, 24 घंटे होल्टर, एबीपीएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
5: सम्पर्क नम्बर 081-536-667, 9215-97532। ठेगाना गणेशमान चोक भेरी अस्पताल जाने बाटो नेपालगंज।
6: Back to back, back to back.
7: In this song,
6: on. Stay tuned.

ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081531366 र 98085049451।
3: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दाँत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
0: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
0: फोन नम्बर 081532375।
4: ओहो, आज डाइहा नै मजा लागत हो, मजासे दवाई करेना कहटु।
5: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न, पश्चिम नेपालके अनुभवी वा उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत।
4: ए बाट ठिक कैलो, साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त?
5: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक अपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत। छोट बच्चा हो, भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
4: ए ओसी नो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह।
5: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो, कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
6: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केन्द्र प्राली, नेपालगञ्ज, फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: रंग बहार रंग बहार
9: बर्जर संगै उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
3: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
9: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाओ खुशी बढाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
3: बर्जर पेन्स
10: Back to back. Back to back.
11: In this song on.
10: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथे आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
1: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद ना आए हमको हाय जग
0: सोता है। भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9746111786982242947। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
5: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
6: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
5: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
6: संपर्क 9705118470।
5: सोफा हब नेपालगंज,
6: विश्वास में नंबर एक,
5: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
4: पश्चिम नेपालकै पहिलो डेडिकेटेड अर्थोपेडिक एन्ड ट्रमा सेन्टर नेशनल मल्टिकेयर हस्पिटल नेपालगञ्ज सुर्खेत रोडमा निरन्तर सेवामा छ। अब सबै सेवा एकै ठाउँमा।
7: हार्ट जोड्नी विशेषज्ञ डाक्टर सैयद सद्दामद्वारा दिइने सेवाहरू, हार्ट जोड्नी, नसा, बात तथा मेरुदण्ड रोगको सम्पूर्ण परामर्श, उपचार र शल्यक्रिया, साथै अन्य सेवाहरू, न्युरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, प्रसूति तथा महिला रोगको उपचार, नाक कान घाँटी तथा बाल रोग, फिजियोथेरापी, प्रयोगशाला र एक्सरे, 24 घण्टा इमर्जेन्सी तथा फार्मेसी सेवा।
4: विस्तृत जानकारी ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर नेशनल मल्टी

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: बैक टू बैक, बैक टू बैक
2: हिंदी सॉन्ग ऑन
1: स्टे ट्यून्ड।

जानकी राघव की है और राघव की ही रहेगी। मेरे राघव का परिचय उन्हीं से पूछ लेना जब वो मुझे लेने आएंगे।

सुविसु अपर्च्युनिटी 1900 बार शिक्षित सबको अवसर में प्रस्तुत सुविसु अपर्च्युनिटी यस योजना अंतर्गत ग्राहक पाने 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 में 65 भन्दा बड़ी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 में साथ ही दामी म्यूजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निःशुल्क शर्त र नियमहरु लागू हुने छन् थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np subisu